जा सकती हैं। तो जब मैंने इट हैपेंस चूज किया था आपके लिए, तो मुझे ये लगा था कि यार मॉर्निंग शो है, तो मॉर्निंग शो में कुछ ऐसा बेहतरीन होना चाहिए जो ऑडियंस को खुद से जोड़े, है ना। हम ऑडियंस से किसी भी प्रोग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब ऑडियंस खुद के साथ कनेक्ट करती है, लिसनर्स खुद के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको आपकी इम्पोर्टेंस बताना इस शो का मकसद है, और यही हम हर रोज कोशिश करते हैं। आज भी इस शो का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम आपको आपकी इम्पोर्टेंस बता सकें, और आपकी इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी के हर एरिया में है। मतलब चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका ऑफिस हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं होंगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो किसी की वजह से भी रुकती नहीं है, कोई भी काम किसी की वजह से नहीं रुकता, लेकिन आप उस काम को बहुत बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बेहतर निभा सकते हैं, आप अपने ऑफिस के हर काम को, अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, डील करते हैं उसके साथ में, राइट। तो बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप अच्छे से निभा रहे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, और इस दुनिया में रहना, हेल्दी और स्ट्रांग रहना आप डिजर्व करते हैं। इसलिए जनाब ये सारा लेक्चर इसीलिए था कि ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूर करें। और आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे, कि लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्टल 107.1 एफएम, आपके साथ इस सफर में सताक्षी है।

0: ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

इस एक और गाने के बाद आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों, कुछ लोग ना हमें खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कुछ लोग हमारे साथ चलना सीखते हैं पर हमारे साथ जब रुकने की बात आती है तो वो हमारे साथ रुक नहीं पाते। कुछ लोगों से शुरुआत में सब कुछ मिल जाता है मगर फिर उनसे मांगना पड़ता है। ये कब बदल जाते हैं खुद वो भी नहीं समझ पाते। बात बस इतनी सी है कि नसीब में जो जितना लिखा है उसका उतने ही वक्त हमारे साथ साथ भी लिखा है। और कहते हैं ना कि नसीब से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, और इसीलिए शायद नसीब जब इनके साथ जितना बंधा है वो टाइम पीरियड खत्म होता है तो ये बदल जाते हैं, ये हमसे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अगर आपसे भी किसी ने दूरी बना ली है तो बस ये याद रखिए कि उसके साथ आपका साथ जो है वो शायद इतना ही था। यह बहुत मुश्किल होता है अपनों को भूल पाना जिन्हें आप मन से अपना मान लेते हैं, बट कभी कभी यही सच है और यही हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ेंगे आगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी 1701 AM सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 एम पर और इस इट हैपेंस के बेहतरीन और खास सफर में दोस्तों आपके साथ आज सताक्षी आपका साथ एक बार फिर से निभा रही है और हम आपके साथ आप ही की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास और जिंदगी के एहसासों से भरी प्यारी बातें और बॉलीवुड के कुछ गाने शेयर कर रहे हैं। जिंदगी जिंदगी जो है वो कहने को बहुत आसान है, मतलब हम भी कहते हैं ना आपसे कि यार जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हम समझते हैं, जितनी आप समझते हैं। बट बेसिकली देखा जाए तो जिंदगी उतनी भी आसान नहीं है। वो रोज की जद्दोजहद, वो रोज की तू मैं, वो रोज के स्ट्रगल्स, रोज गोल्स की तरफ अपने कदम बढ़ाना, ये सब आसान नहीं है। लेकिन ये आप करते हैं और पूरी शिद्दत से करते हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है, अच्छी तरह से मालूम है कि जिंदगी के लम्हे जो हैं वो जिंदगी जीने में है, जिंदगी जाया करने में नहीं। एक एक पल के साथ अपनी जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, अपनी इस जिंदगी को जीना पड़ता है और इसे इसकी खूबसूरती को महसूस करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये जिंदगी जो है ये हमारी बन पाती है, वरना तो हमेशा ये जिंदगी शिकवे शिकायतों में ही निकल जाती है। तो जिंदगी आसान है नहीं, इसे आसान करना पड़ता है। इसी एक बात पर आगे बढ़ेंगे एक और गाने के साथ, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेनी, आपके साथ है सताक्षी।

0: पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर, आपका और मेरा आज एक और खूबसूरत और प्यार भरा साथ। और बात करूंगी अभी उनसे जो अकेलेपन से बहुत परेशान है, जिन्हें अकेलेपन से डर लगता है और जो चाहते हैं कि उनके आसपास हमेशा लोग रहें। तो देखिए जनाब, अकेलापन एक टाइम तक ही दर्द देता है, उसके बाद इसका एक गहरा नशा हो जाता है। फिर अकेलेपन के साथ रहना लगता है कि अपने किसी बहुत ही गहरे दोस्त के साथ है। जी हाँ, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इंसान मजबूत होता है ना, वही अकेला रह सकता है, क्योंकि कमजोर को हमेशा भीड़ या सहारे की जरूरत होती है और वो भीड़ या सहारा ही खोजता है। इसलिए अगर आप अकेले रह सकते हैं या अकेले रहना जानते हैं, तो सच में आप में बहुत गट्स हैं और आप बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग हैं। और इसी बात पर एक और गाना सिर्फ आपके नाम। सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं दोस्तों आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। कहते हैं पीपल विल ट्रीट यू द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। जी हाँ, जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ व्यवहार करें वैसा ही तो लोग आपके साथ बिहेव करते हैं। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी। अब आपको लगेगा कि सताक्षी क्या मतलब है कि जो लोग हमें हर्ट करते हैं क्या हम उनसे कहते हैं कि वो हमें हर्ट करें। देखिए, आपको क्या लगता है अगर किसी एक बंदे ने आपको हर्ट किया है तो उसमें उसकी गलती है? नहीं ना, उसने तो कई बार ये कोशिश की है कि आप हर्ट हो, आप परेशान हो। वो तो आप ही को लगता है ना कि रिश्ता इतना गहरा है कि इस रिश्ते को हम निभा लेते हैं, बचा लेते हैं, और आप बार बार उसे मौका देते हैं। तो अब बताइए कि आज जब आप हर्ट हुए तो गलती आपकी है या उसकी है? लोगों को बार बार मौका देना भी एक्चुअली हमारी गलती है। अगर आप किसी के भी साथ हैं, उसको एक कॉफी पर जाने के लिए भी आपसे पूछने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हमें अपने पूरे ऑरा के अंदर ना एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, उसको उस लाइन को, सामने वाले को उस लाइन को क्रॉस करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई हमें कुछ भी कह के चला जाए। और ये बात हमारे अपनों पर भी, जिन्हें हम अपना बड़ा खास समझते हैं, उन पर भी लागू होती है। तो ध्यान रखिए इस बात का, अगर आपको कोई परेशान करता है, तंग करता है, तो हर बार नहीं लेकिन बहुत बारी आप भी उतने ही जिम्मेदार बन जाते हैं। जाने अनजाने ही सही, लेकिन ये सच है। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ आगे बढ़ते हैं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। जी हाँ, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो। और चलिए, ये ट्रैक अभी आपके लिए है।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com.
2: Family business built on trust.
3: बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही प्यारे होते हैं, इतने प्यारे कि वो चालाकी शब्द को जानते नहीं है, उनके अंदर चालाकी होती ही नहीं है। और ये बात ना, ये हमें किसी और से जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बात उनकी आंखों में, उनकी बातों में नजर आती है। आप कुछ पता है वो लोग ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि शायद उन्होंने खुद ने जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, इतना दर्द सहा है, लोगों ने उनको इतना चीट किया है कि अब उन्हें लगता है कि बस ये दर्द जो है ये बहुत गहरा होता है और कम से कम उनकी वजह से ये दर्द, ये पेन किसी को ना हो। इसीलिए वो कभी कुछ ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से दूसरे दर्द में आ जाए। बहुत ही खास होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों के नाम ये अगला ट्रैक है, इसे सुनते हैं और सुनते रहिए इट हैपेंस। आपके साथ सताक्षी है।

ये था आज इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ एक और बेहतरीन सा साथ। जी हाँ, कुछ खास बातों और बेहतरीन लम्हों के साथ आज की सुबह की हमने शुरुआत की है और उम्मीद करते हैं कि ये सुबह जो है ये आपकी जिंदगी की बेस्ट सुबह होगी। तो चलिए एक और मॉर्निंग के साथ कल सुबह फिर से मिलूंगी आपसे, लेकिन आज इस सफर से इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि कल फिर से मिलेंगे। आज लेते हैं विदा और जब तक हम और आप मिलते हैं, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। हैव अ ग्रेट डे एंड इज ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो, कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इस गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान ते छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दियां गलियां दी धुन प्रस्तुत कीती है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया, निशांत नागर ने इस तैयार किया। यह गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस दी शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला रंग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो, पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी आ। गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी वन सन वन एम ते चार छे संदेश अलग दराल से बने हुए। अगली जेड़ी गल हैगी है वह है तवायफ गौहर जान दी। गौहर जान प्यार विच दर्द चो गुजरी सी, ए कहा जांदा है ते कहा जांदा है कि कहानी किते ना किते उसकी है। मन्या जांदा है कि ए कजरी यानी कि मानसून विच गाया जाण वाला एक लोक गीत 19वीं शताब्दी विच बनाया गया सी। ए गीत एक औरत दे विरह दे दर्द नू बयां करता है। इस औरत नू तवायफ कहंदे हैगे लोग, सानू नहीं पता, कहंदे हैगे ने, रिपोर्ट्स कहंदियां ने। कई रिपोर्ट्स मुताबिक ना यह कहानी लगभग 200 साल पहला किसी गौहर जान दी सी, जो बनारस दी दाल मंडी विच रहंदी सी ते एक तवायफ सी। अजिहा मन्या जांदा है कि वह कचौड़ी गली विच अपनी पालकी विच घूमण जांदी सी ते चौक दे कोलों गुजरदे समय ना जो लंघदे समय ना उन्होंने असलम नाम दा एक आदमी उन्होंने मिलिया सीगा। उथों ही तो कहानी शुरू हुई सी। दसदी उस बारे होर ज्यादा डिटेल्स दे विच, पर पहला सुनो एक गीत।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली है जड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नू अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नू अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिम्पशियों विच भेजा जांदा सी जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिराल से बने हुए हो। देखो कुछ चौड़ी गली बारे में तो उन्होंने इतना कुछ दास्ता है का है तो उसी देखियो जरूर एक बारी गीत ते तुसी जेडे घर दे विच बुजुर्ग होणगे ना शायद उन्हां नूं कुछ पता होवे या फिर गूगल करियो तो थोनू पता लग जाना है कि यह गल्ला किनिया कुछ सच है क्या ने। हुण देखो इस नाल होर भी गल्ला हैगियां ने जुड़ियां होईयां जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र 40,000 सैनिकां दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए सी। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच वी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दिती सी ते बर्मा विच बंदरगाह शहरा विच रोजगार दे अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाहां चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह जिसके तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था?

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365। दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
8: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
9: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 04305258 96। दैट इज 04305258 96। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: 602 or email me at royalindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

নাচে নাচে কই আহা আহা নাচে নাচে সারে হাসি আহা নাচে নাচে।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिला। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: और सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
6: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे। जी हाँ, कैसा फील कर रहे हैं आप, क्या चल रहा है। आज है थर्सडे का दिन, सो आई होप आपके जो मंडे ब्लूज और ट्यूसडे के जो सारे ब्लूज हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हो। ऑफकोर्स मोटिवेशन जो है वो बनी रहनी चाहिए। ऑफकोर्स अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत नहीं की जिंदगी में तो क्या किया, राइट। सो वो सब तो करते रहना है, लेकिन थोड़ी सी सुकून की सांस भी लेते रहना है, क्योंकि वक्त जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता। ऐसा ना हो कि आप अपने सपनों को ही अचीव करने के लिए मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, जब आप सक्सेसफुल हो जाओ तो आपको ऐसा फील हो, ओह बट वो सारा वक्त तो चला गया जब मैं फन कर सकता था या कर सकती थी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो ऑफकोर्स प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल जो है वो करते हैं हम, एंड दैट इज अ वेरी हेल्दी रिचुअल। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करेंगे और लंबी गहरी सांसों का जो जादू है वो हर किसी जगह चलता है, हर किसी वक्त चलता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते शुरुआत होगी प्रोग्राम की एक बढ़िया से गाने के साथ। और वो बढ़िया सा गाना क्या है, वेल वो है मैं तो नहीं हैवान। जी हाँ, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें, क्योंकि बातें अभी शुरू हुई हैं मेरे दोस्त, और अभी तो आगे भी और बहुत सारी होंगी।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब शुरुआत हो गई है, तो आपको सीधा लेकर चलते हैं मौसम की ओर। क्या कह रहा है मौसम, वेदर क्या कह रहा है आज की बात करते हैं। सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 23.6 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 21.6 डिग्री सेल्सियस के करीब। ऑल द पूरे दिन सूरज जो है वो चमकता हुआ दिखा आपको, लेकिन गर्मी जो है वो भी बढ़ने वाली है अब। जी हाँ, मतलब वैसे गर्मी जो है आज उतनी नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि अभी दो तीन दिन मुझे कोई भी बारिश जो है वो नजर नहीं आ रही है। बाकी इसमें चेंजेस हम आपको बताते रहेंगे। चलिए, आज के दिन की बात तो हमने कर ली, अब रात की बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने वाला है। और नो चांसेस ऑफ बारिश, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। जी हाँ, वहीं फ्राइडे को भी कल एकदम सुहाना सा मौसम रहेगा विद 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और नो चांसेस ऑफ बारिश, और पूरी तरह से चमचमाता हुआ, खिलखिलाता हुआ सूरज आपको आसमान में दिखने वाला है। सैटरडे को ऑन द अदर हैंड बादल आपको नजर आ सकते हैं आसमान में विद 26 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, और बारिश के चांसेस भी हैं पर थोड़े से ही हैं, 20% के करीब, जो कि ना के बराबर है, बट कुछ इलाकों में हो सकती है थोड़ी बहुत बारिश, जो कि मुझे यहां पर दिख रहा है। दैट्स अबाउट इट, ये है मौसम का हाल। और मौसम जो है वो अपनी करवट जो है वो बदल रहा है, कभी आपको गर्मी का एहसास करा रहा है, कभी आपको कह रहा है कि फिर से ठंड हो गई है, तो अपने गर्मी के कपड़े यानी कि सर्दी के कपड़े अभी अंदर मत रखो। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि थिएटर्स में एक मूवी लगी है जिसका नाम है एवेंजर्स एंड गेम इनकोर, क्या आपने वो देखी? आप लोग बोलोगे एंड गेम इनकोर, नहीं भाई ये तो हमने बहुत साल पहले ही देख ली थी। वेल, अगर आप इस मूवी को पहले भी देख चुके हो और अब भी देखोगे तो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि उस वक्त आप डिफरेंट माइंडसेट के साथ इसे देखने गए थे और अब आप इसे डिफरेंट माइंडसेट के साथ देखने जाओगे। जी हाँ, क्योंकि उसके बाद मार्वल ने बहुत सारा यूनिवर्स और क्रिएट किया, बहुत बड़ा यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश की, कुछ खराब मूवीज भी दी, लेकिन यहां पर जो फीलिंग ये मूवी आपको सर्व करती है इन्फिनिटी वॉर के बाद, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। सो अगर आप मार्वल यूनिवर्स को फॉलो करते हो और अगर आप भी डूम्स डे का इंतजार कर रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि एक बार फिर से उसको ताजा कर लीजिए जो मार्वल एंड गेम ने आपको दी थी, एंड दिस इज एंड गेम इनकोर। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ चीजें अलग भी हैं, कुछ चीजें जी हाँ, और वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाई गई हैं। क्या है, क्यों है और क्यों इस मूवी को रिलीज किया गया है? सिर्फ इसलिए रिलीज किया गया है कि क्या आपकी जो मेमोरीज हैं उनको ताजा किया जा सके, या फिर इसलिए किया गया है कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया जा सके, क्योंकि जब कुछ साल पहले आपने ये देखी थी तब आप कुछ और थे, अब जब आप इसे देखोगे तो आप कुछ और हो। जी हाँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब जब मैं हैरी पॉटर देखती हूँ तो मुझे हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। सो हैरी पॉटर इज द काइंड ऑफ मूवी आई वॉच एवरी ईयर, एटलीस्ट आई ट्राई टू, बिकॉज हर साल जब मैं उस मूवी को देखती हूँ, पूरी सीरीज को, तो मैं एक नई चीज सीखती हूँ। मैं राइटर के पर्सपेक्टिव से कुछ नया सीखती हूँ, सिनेमेटोग्राफर के पर्सपेक्टिव से कुछ नया सीखती हूँ, और तो और जिस हिसाब से उन कैरेक्टर्स ने उसको इनैक्ट किया है उसके हिसाब से भी कुछ डिफरेंट सीखती हूँ। सो या मार्वल डूम्सडे का अगर आप इंतजार कर रहे हो, जो कि बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है अब तो, क्योंकि अक्टूबर लग गया है। जी हाँ, इट्स 1st of October और फॉल जो है वो बहुत सारी कंट्री में ऑफिशियली आ गया है, और स्प्रिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में तो चल ही रहा है। जी हाँ, सो ये कहानी आप देखिए और मुझे बताइए क्या आपको भी वो ताजगी फील हुई, फिर से वो सारी की सारी मेमोरीज फ्रेश हो गई एंड गेम की, और फिर डूम्सडे का इंतजार कीजिए क्योंकि वो अब पल दूर नहीं है जब आपको वो देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲਾਇਰ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਕੇਸ।
2: ਗੋ ਫਾਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੀਰੇ, ਅਤੁਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਰੱਗ ਓਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੈਟ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ।
3: ਥੈਂਕਸ ਤਨਵੀਰੇ, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, उसी के साथ बात कर लेते हैं उस हीरो की जो कि रियल लाइफ हीरो। वेल, हम हमेशा बात करते हैं पिक्चरों के हीरोज की। जी हाँ, वो हीरोज जो हमें एंटरटेन करते हैं, वो हीरोज जो पर्दे पर फाइटिंग करते हैं, वो हीरोज जो पर्दे पर लोगों को बचाते हैं। लेकिन जो रियल लाइफ हीरोज होते हैं, जिन्होंने रियल में ये काम कर दिया है, जी हाँ, उनको सेलिब्रेट करना कहीं ज्यादा वो डिजर्व करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर एक रियल लाइफ हीरो के लिए सबसे पहले तो मैं कहती हूँ तालियां, क्योंकि जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ही इज नन अदर देन द पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर, जो कि लिटरली हीरो बनके आए हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक फ्लाइट पर बचा लिया। जी हाँ, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, बिकॉज लिटरली एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिम एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू। जी हाँ, सो ये बहुत सारे बड़े बड़े नेशनल लीडर्स जो हैं, इंक्लूडिंग नितिन्याहू, इंक्लूडिंग मिस्टर मोदी, सब जो हैं इनको लिटरली हेल कर रहे हैं। ये वही पायलट हैं जिन पर अटैक हुआ एक दूसरे पायलट के द्वारा, और वो पायलट जो कि ओमानी पायलट बताया जा रहा है, जो कि फ्लाई दुबई की एक फ्लाइट जो है जो जा रही थी तेल अवीव की तरफ, जी हाँ, दुबई से यूएई से तेल अवीव की तरफ जो है वो जा रही थी, और उस फ्लाइट के बीच में ही वो जो ओमानी पायलट था वो हमला करता है दूसरे पायलट पर, और अपेरेंटली वो दूसरे पायलट जो है वो इंडियन ओरिजिन के थे। जी हाँ, इंडियन पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर। लेकिन यहां पर जब वो ओमानी पायलट उन पर हमला करता है तो वो पूरी तरह से संघर्ष करते हैं, पूरी तरह से उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। जब वो पायलट पर हमला करता है तो फ्लाइट जो है वो एकदम नीचे की तरफ ड्रॉप करने लगती है और वो काफी नीचे तक ड्रॉप कर भी जाती है, लेकिन वो इंडियन पायलट स्मिथ जो है उन्होंने उस फ्लाइट को संभाला, ना सिर्फ फ्लाइट को संभाला बल्कि उस ओमानी पायलट से फाइट भी की। और अब तो लोग बोल रहे हैं कि उसे ओमानी पायलट कहने की जरूरत नहीं है बिकॉज ही इज अ टेररिस्ट। जी हाँ, उस ओमानी टेररिस्ट से उन्होंने पूरी तरह से फाइट की और कॉकपिट का दरवाजा खोला। नाउ कॉकपिट का दरवाजा खोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, या तो पायलट उसे अंदर से खोल सकता है या तो एक कोड होता है जिस कोड को डालकर उसे बाहर से खोला जा सकता है। सो ना सिर्फ उन्होंने फ्लाइट को संभाला, उन्होंने फ्लाइट हाईजैक का कोड भी शेयर किया नीचे जो वहां पर लोग बैठे हुए थे फ्लाइट कंट्रोल वाले। जी हाँ, और वहां पर कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए उन्होंने वो कोड भी शेयर किया ताकि वो सारी की सारी सिचुएशन वो संभाल सके। जी हाँ, वो ओमानी पायलट की हालत तो खराब है ही, उन्होंने उसको पूरी तरह से डिसआर्म करवा दिया और पूरी तरह से कंट्रोल करवा दिया, लेकिन उनकी जो कि ये सारा का सारा काम कर रहे थे स्मिथ, जिन्होंने ये सारी की सारी सिचुएशन संभाली, वो इंडियन पायलट लिटरली अ हीरो, उनकी हालत अभी भी खराब है। उन्हें सऊदी अरेबिया में ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि जब ये सब हो रहा था तो उसके बाद ये फ्लाइट जो है वो एकदम से जॉर्डन की तरफ को जाती है और फिर सऊदी अरेबिया में इसे लैंड किया जाता है। आई एम टेलिंग यू एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिम एंड ही डिजर्व्स दैट। मतलब एक ऐसा इंसान जितने लिटरली ऑन बोर्ड सारे लोगों की जान बचा ली, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो सारे के सारे लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते। सो मैं कहती हूँ ना, हम सेलिब्रेट करते हैं उन हीरोज को जो हमें पर्दे पर एंटरटेन करते हैं, पर्दे पर हमें फील कराते हैं कि वाह हीरो हो तो ऐसा, लेकिन जो रियल लाइफ हीरोज हैं वो उनसे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं हीरोइक काम करने के लिए, उन्हें सेलिब्रेट करना। सो या कैप्टन स्मिथ, मच्छर मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आपने जो किया है वो लिटरली लाजवाब है और हम सल्यूट करते हैं आपको उसके लिए। एंड दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना मेरे दिमाग में आ रहा था जो कि मैं प्ले करने वाली हूँ आप सबके लिए, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, एक इंडियन पायलट ने वो सारी की सारी सिचुएशन संभाल ली और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है फॉर एनी इंडियन जो कि इस दुनिया में कहीं भी रहते हैं। जी हाँ,

जी दोस्तों, तो इसी के साथ बात कर लेते हैं ओपन एआई के। जी हाँ, ओपन एआई वही जो पेरेंट कंपनी है चैट जीपीटी की। जी हाँ, सो यहाँ पर चैट जीपीटी का एक नया वर्जन आने वाला था। उसका नाम था चैट जीपीटी 6.1 अस्त्र। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। वेल ऑफ कोर्स यू आर राइट, थोड़े दिन पहले ही इसका एक वर्जन लॉन्च हुआ था जिसका नाम इन्होंने रखा था चैट जीपीटी अस्त्र। नाउ दिस इज चैट जीपीटी 6.1 अस्त्र। इट्स नॉट चैट जीपीटी, इट्स एग्जैक्टली जीपीटी 6.1 अस्त्र। लेकिन इसके लॉन्च को कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, ऐसा क्यों किया गया है आइए जरा आपको बताते हैं। सो ओपन एआई स्क्रैप्स प्लान्ड एआई मॉडल रिलीजेस आफ्टर सेफ्टी टेस्ट रेज कंसर्न्स। जी हाँ, जब इसके सेफ्टी टेस्ट हुए तो उन्होंने बताया कि ये ऑथराइज लिमिट में नहीं रह रहा, ये कुछ ज्यादा ही चीजें करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है, और इस वजह से अब जीपीटी इसे लॉन्च नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि जीपीटी अस्त्र जो है, जो कि लॉन्च हुआ है कुछ वक्त पहले ही, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली इट कैन डू लिटरली एवरीथिंग बाय इटसेल्फ। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जीपीटी अस्त्र को बनाने वाले जो हैं वो सारे चैट बोट्स हैं। मतलब इसे किसी भी तरह से ह्यूमन ने एग्जैक्टली नहीं बनाया है, बल्कि इसे जीपीटी को चैट बोट्स ने ही बनाया है। सो बेसिकली इसे पूरी तरह से एआई ने क्रिएट किया है, और इसी वजह से इसको क्या क्या लिमिट्स देनी थी वो नहीं दे पाए। नाउ जीपीटी 6.1 अस्त्र जो है वो लॉन्च होने वाला था, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो है, और सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से इसे जो है वो रद्द कर दिया गया है। अब आप लोग बोलोगे कि अच्छा, ऐसा कुछ हमने सुना भी था या ऑस्ट्रेलिया तो बल्कि ये चीज भुगत चुका है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के मेडिकेयर इंडस्ट्री में से एक रोज जो एआई बोट था उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों की निकाल ली। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सीधा कह दिया, इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीसी

लिटरली ऐसी जगह पर घुस गया जहां से उसने लोगों का, नॉर्मल लोगों का मेडिकेयर इंडस्ट्री से डाटा वहां से ले लिया। अब उसमें से कितना डाटा लिया गया था, कितना नहीं लिया गया था, ये तो किसी की तरफ से नहीं बताया गया, लेकिन दैट वॉज द रीजन कि उसके बाद सैम ऑल्टमैन ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से और ऑस्ट्रेलियन लोगों से माफी मांगी है इस चीज के लिए। नाउ यहां पर 6.1 अस्त्र आने वाला था, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब वो सेफ्टी लिमिट्स को पार कर रहा है। इस वजह से सैम ऑल्टमैन ने कह दिया है कि हम इसे लॉन्च नहीं कर रहे हैं, इसमें हम पहले ठीक करेंगे चीजें, उसके बाद इसे लॉन्च करने के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज विल हैव टू सी क्या होगा क्या नहीं होगा। नाउ ये चीज हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे ये चीजें इतनी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है दिन प्रतिदिन, की जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं वो भी क्या उनका डाटा भी क्या सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि ये एआई इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। एंड सैम ऑल्टमैन को धक्का अभी थोड़े दिन पहले ही लगा है, सो ही इज लाइक ओके वी आर नॉट गना यू नो डू दिस 6.1 जीपीटी अस्त्रा मॉडल, बिकॉज इसमें कुछ ठीक करना पड़ेगा हमें। जब तक हम इसे सुनिश्चित नहीं कर लेते कि ये पूरी तरह से ठीक से काम करेगा, सेफ्टी लिमिट्स के अंदर रह रहे के काम करेगा, कहीं भी ऐसे नहीं घुस जाएगा किसी के भी डेटाबेस में, किसी की भी सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं करेगा, तब तक हम इसे नहीं लॉन्च करने वाले। वेल वी विल हैव टू सी टू दैट बिकॉज एआई इज रियली कैपेबल। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: For aap sun rahe hain Radio Briswani.
5: Hi guys, I'm Madhvit, one of the Meat Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, main hoon Tulsi Kumar. Aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
13: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
14: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
15: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
14: अच्छा, वो क्या?
15: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
14: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
15: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
16: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों, अभी हम एआई की ही बात कर रहे थे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के मेडिकेयर डेटाबेस में घुसकर उसने काफी सारी इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश की वहां से. एंड ऑफकोर्स उसके बाद सैम ऑल्टमैन ने और ओपन एआई ने माफी भी मांगी है. लेकिन ये ऐसा ही सिर्फ इधर ही नहीं हुआ है बल्कि इटली में तो और भी ज्यादा खतरनाक चीज हो गई है. जी हाँ, सो एक बैंक से लूट लिया गया सामान. एंड एग्जैक्टली लूटा नहीं है, क्योंकि लूटने के लिए तो सीधा सीधा आपको गड़बड़ करने की जरूरत है. लेकिन यहां पर एआई ने बंदे को इम्पर्सोनेट करने की कोशिश की और उसके बाद जो है वो बैंक से 108 मिलियन डॉलर जो है वो ट्रांसफर कर दिए, निकाल लिए. आप लोग बोलोगे कि हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? लाइक लिटरली इटालियन बैंक लूजेस 108 मिलियन डॉलर आफ्टर स्कैमर्स यूज एआई टू इम्पर्सनेट एग्जीक्यूटिव्स. जी हाँ, सो ये किसके थ्रू हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इंटेसा सैन पोलोज के जो सीईओ है उनकी आवाज को कॉपी किया गया एआई के थ्रू, उसे बनाया गया और फिर उसके बाद एक सीनियर लॉ फर्म पार्टनर की वॉइस को भी कॉपी किया गया एआई के थ्रू और फिर उसी की मदद से बैंक से जो है ये पैसे ट्रांसफर किए गए। मतलब आप सोचिए, बैंक्स को भी ये पागल बना रहे हैं और बैंकों के पास हमारा पैसा है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसे के मामले में जब भी गड़बड़ होती है तो ज्यादा फील होता है, और यहाँ पे वही हुआ है। लाइक लिटरली ये इटालियन बैंक जो है, इसको ट्रिक कर दिया गया इनटू ट्रांसफरिंग 108 मिलियन आफ्टर स्कैमर्स यूज्ड एआई टू इम्पर्सनेट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड लॉयर्स। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा पैसा, मतलब मुझे लगता है कि हमको अपना पैसा वैसा ना निकाल के सीधा अपनी किसी तिजोरी में डाल लेना चाहिए, कहीं दबा देना चाहिए, जैसे पुराने लोग खजाना दबाते थे ना अपने घर के पीछे या घर के आगे, बस वैसे ही करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक वहीं पर सेफ है, उसके अलावा तो कहाँ ही सेफ होगा। AI आपका पैसा चुरा लेगा, AI इतना खतरनाक हो गया है कि क्या ही करे। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा डराओ मत, हमारा पैसा क्या बैंक में सेफ नहीं है। वेल ऑफ कोर्स इसके बाद जो है कुछ कानून जो है इसके बारे में निकलेंगे, और इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स है वो बात भी कर रही है कि कैसे AI कैन बी अ रियल रियल थ्रेट। तो इसके इस्तेमाल पर जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, उसके अलावा जो है इस पर जो है वो ऑफ कोर्स केस किया जाना चाहिए जो इसको यूज कर रहा है ऐसे वैसे। सो बेसिकली कंट्रीज तो ऐसा कुछ बहुत करने के लिए कह रही है, पर कंट्रीज ने तो ये भी कहा था ना कि स्पेस में जो है वो कोई भी वेपन नहीं भेज पाएगा, लेकिन अमेरिका ने बोल दिया अभी थोड़े दिन पहले कि अरे हमने तो स्पेस में वेपन्स पहुंचा दिए हैं, हमारे वेपन स्पेस में भी उड़ रहे हैं अब। जी हाँ, और तो उन्होंने डील साइन की थी कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कोई भी वेपन, कोई भी कंट्री कोई भी वेपन जो है वो स्पेस में नहीं भेजेगी, बट अमेरिका ने तो वो भी ब्रीच कर दिया। सो बेसिकली रूल्स जो है ये कहने की बात होती है, लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते वो एक दूसरी बात है। जी हाँ, सो यहाँ पर बैंक जो है वो लिटरली लुटेरे का शिकार हो गया, लेकिन उसके बाद जो है इसके जो पैसे थे वो हांगकांग और चाइना में ट्रांसफर किए गए थे। काफी सारी रकम जो है वो जो है काफी सारे पैसे जो है वो रिकवर कर लिए गए, लेकिन अगर बात की जाए 41 मिलियन डॉलर के करीब जो है वो अभी भी रिकवर नहीं हो पाए हैं। और बताओ, जिस कंपनी के पैसे थे, जिस कंपनी के सीईओ के पैसे थे, उसका AI बना के वहां पर जो है वो पूरा लूटा पार्टी करके उनको भेज दिया यहाँ वहां। जी मतलब मैं क्या बोलूं, AI क्या क्या क्या चल रही है, क्या चल रहा है। जी यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन जबरदस्त है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है खबरों का सिलसिला शुरू करने का। जी हाँ, खबरों का सिलसिला शुरू हो रहा है, मतलब अब हम खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। रेडी हो जाइए उसके लिए, क्योंकि काफी सारा रियलिटी चेक हमें मिलने वाला है। दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें पता चलने वाला है। और अगेन, दुनिया में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बट वी आर गना टॉक अबाउट इट, क्योंकि अपडेटेड रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे स्मित मच्छर, जो कि पायलट थे फ्लाई दुबई के, और उन्होंने उस फ्लाइट को बचा लिया, लिटरली उस फ्लाइट को बचा लिया जब वो अंडर अटैक थी। मतलब एक को पायलट ने उनको स्टैब करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, उन्होंने अपने आप को बचाते हुए साथ साथ में, मतलब वो काफी घायल हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फटाफट जो है कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए कोड बताया बाहर को। जब फ्लाइट जो है वो ड्रॉप कर रही थी, लिटरली काफी ड्रॉप कर गई थी, तो उसको संभाला। जी हाँ, कोड शेयर किया कि कैसे हाईजैक जो है वो शायद फ्लाइट हो रही है। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया। एंड अगेन, इसके बारे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं। सो इंडिया की, यानी कि भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भी कहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लाई दुबई फ्लाइट के पायलट भारतीय नागरिक कैप्टन स्मित मच्छर की तारीफ की है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पायलट की बहादुरी और तुरंत कार्रवाई ने एक बड़ी दुर्घटना को रोकने में मदद की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि देश को कैप्टन स्मित मच्छर पर गर्व है। उनकी बहादुरी और मुश्किल समय में तुरंत सही फैसला लेने की उनकी क्षमता ने हम सभी को प्रभावित किया है। गंभीर खतरे के बीच गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वो दूसरे की जान बचाने के लिए डटे रहे। उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई ने एक बड़ी दुर्घटना को रोकने में मदद की और उनकी और कई कीमती जानें बचाई। उन्होंने कहा, मैं उनकी मजबूत हौसले को सलाम करती हूं, मैं उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करती हूं। जी हाँ, इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी लिखा इसी के साथ कैप्टन स्मिथ के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने भी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी लिखा है। उन्होंने कहा कि कल एक घटना घटी थी जिसमें भारत के कैप्टन स्मिथ ने धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय दिया था। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, यानी कि 9/11 होने से बचा लिया। उनका ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। उन्होंने कहा, मेरी कैप्टन स्मिथ के परिवार से भी बात हुई है, आज पूरी दुनिया पर उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि सभी स्मिथ की दीर्घायु के लिए कामना करें और भारत का गौरव बढ़ाने वाले स्मिथ का अभिनंदन भी करें। वेल, डेफिनेटली ऐसा ही है, और हम सबको प्रे करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द रिकवर कर सकें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किए हवाई हमले, तालिबान सरकार ने क्या कहा? जी हाँ, ये मसला भी जो है वो सुलझने में नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया है कि उसकी सेना ने अफगानिस्तान में दो जगहों पर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। सरकार के मुताबिक इन हमलों में कई आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि ऑपरेशन गजब उल हक के तहत चरमपंथी संगठनों के ठिकानों और सुरक्षित ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इसका मकसद चरमपंथियों, उनके नेटवर्क और उनकी मदद करने वालों को खत्म करना था। बयान में कहा गया कि पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर अफगानिस्तान में दो जगहों पर आतंकियों के ठिकानों और उनके ठहरने की जगहों को निशाना बनाया गया। बयान में दावा किया गया है कि इन ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। इन कार्रवाइयों में 22 चरमपंथी भी मारे गए हैं। दूसरी ओर, तालिबान सरकार ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने पिछली रात देश के कुनार और हेलमंद प्रांतों में हवाई हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर जारी एक बयान में दावा किया कि पाकिस्तान ने आम लोगों के घरों पर हवाई हमले किए। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि इन हमलों में 9 लोग मारे गए और 11 घायल हुए। प्रवक्ता के अनुसार मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

जी हाँ दोस्तों, और अगर कोई कंट्री है जो इस खबरों के पूरे सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रही है तो वो ईरान है। मतलब ईरान बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है। जी हाँ, तो फिर से जो है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और ये स्टेटमेंट उन्होंने बेसिकली नसीहत दी है दुबई को, यानी कि यूएई को। जी हाँ, सो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रजाई ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी को लेकर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की आलोचना की है। रजाई ने अरबी भाषा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बिना यूएई का नाम लिए लिखा, जिस तरह अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी से आपको सुरक्षा नहीं मिली, उसी तरह गाजा के कसाई की मेजबानी भी अच्छे नतीजे नहीं देगी। रजाई ने अपने पोस्ट में कहा कि हालिया युद्ध से सबक लें, युद्ध को बढ़ाना बंद करें और ईरानी द्वीपों को लेकर निराधार दावे करना बंद करें। दरअसल यूएई ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर ईरान की आलोचना की और 3 द्वीपों पर उसके कथित कब्जे का मुद्दा उठाया। ईरान और यूएई के बीच इन द्वीपों को लेकर लंबे समय से विवाद है। वहीं ईरान और ब्रिटेन के बीच में भी कुछ चल रहा है, आइए जरा वो भी आपको बताते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नम ने कहा है कि सरकार को इस बात के मजबूत संकेत मिले हैं कि IRF फेयरफर्ड की घटना में ईरान की भूमिका थी। जी हाँ, एंडी बर्नम ने यह दावा बीबीसी से बातचीत के दौरान किया, हालांकि उन्होंने इस दावे के संबंध में कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। दरअसल हाल ही में ब्रिटेन के आरएएफ फेयरफर्ड एयरबेस के पास चरमपंथी हमले की साजिश के संदेह में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये मिलिट्री बेस अमेरिका से भी जुड़ा है। इसी घटना के पीछे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ईरान की भूमिका बताई है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बयान पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के नेता गलत दिशा में देख रहे हैं। अब्बास अराग्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीएम बर्नम कहते हैं कि ब्रिटेन की सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि आरएएफ फेयरफर्ड की घटना में ईरान की भूमिका रही है। मैं ईरान के इस विश्वास की पुष्टि कर सकता हूं कि दूसरे देशों के लिए काम करने वाले कथित आतंकवादियों को छोड़ना अपने आप में सब कुछ कह देता है। आप गलत जगह पर निशाना लगा रहे हैं। जी हाँ, ये कहना है अब्बास अराग्ची का। चलिए इसी के साथ एक और गाना आप सब के लिए मेरी तरफ से।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए। ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
5: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
6: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स,

0: गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
0: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसको सुन के आपको ऐसा फील होने वाला है कि नाउ वी आर टॉकिंग। अब टेक्नोलॉजी कुछ अच्छा कर रही है, अब काम हो रहा है, मतलब अब हम तरक्की कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गोना टॉक अबाउट मेडिकल इंडस्ट्री। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेडनेसडे को एक बहुत ही जबरदस्त सा पॉडकास्ट जो है वो हुआ है, और इसमें एक बहुत ही फेमस हेल्थ फिजिशियन एंड प्रोफेसर डॉक्टर रजा ने, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फिजिशियन एंड प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक डिवाइस के बारे में बताया। सो बेसिकली इट्स लाइक अ इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन उनके हिसाब से इज अ क्योर टू कैंसर। जी हाँ, आप लोग बोलोगे क्योर टू कैंसर, या नो इम्यूनोथेरेपी, नो कीमोथेरेपी, नो नथिंग, मतलब कोई चीज की जरूरत नहीं है। वो सिरिंज जो वो होल्ड किए हुए थी, उनका कहना था कि वो क्योर है कैंसर का। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट इज, आई एम गोना टेल यू अबाउट इट, बिकॉज जब मैं उस पूरे पॉडकास्ट को देख रही थी, आई वॉज लाइक वाओ वाओ, मतलब नाउ वी आर टॉकिंग। मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब किसी अच्छी चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉक्टर रजा के अनुसार वो सिरिंज जो है उसमें जो है वो नीडल में जो है उसका ट्रीटमेंट है, नॉट इन अ सिरिंज। जी हाँ, मतलब वो सिरिंज में ट्रीटमेंट नहीं है, बट उसकी नीडल में ट्रीटमेंट है। और वो ट्रीटमेंट क्या है? वेल, हमने कॉरोनरी स्टंट्स के बारे में तो सुना ही है, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉकिंग विद दैट थिंग, लिटरली। कॉरोनरी स्टंट जो है वो लिटरली हार्ट में डाले जाते हैं, और उसके बाद जो है वो ब्लड फ्लो बेटर हो जाए और हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाए जिन लोगों की नहीं होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही कोरोनरी स्टंट जो है वो इंजीनियर्स के द्वारा लिया गया, और उसके अलावा जो उसके अराउंड जो है उन्होंने उसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसमें कुछ फेरबदल किए, और वो स्टंट जो है वो डायरेक्ट जो है वो वेन्स में लगाया जा सकता है, मतलब उसे इंजेक्ट जो है वो किया जा सकता है, और फिर उसके बाद उसे कॉरोनरी आर्टरीज में लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा वेन्स में लगाया जा सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू हर, बिकॉज कैंसर सेल्स आर द लार्जेस्ट सेल्स, मतलब जो ब्लड सेल्स होते हैं नॉर्मल, उससे कहीं ज्यादा बड़े सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स को सबसे बड़ा और लार्जेस्ट माना गया है, तो जो भी वहां उस स्टंट के बाजू से गुजरता है जब भी, तो वो स्टंट, वो जो चीज है वो उसको देखती है, उनको फिगर आउट करती है, उनको जो है वो पहचानती है उन सेल्स को, और गेस व्हाट, वो इलेक्ट्रिक्यूट कर देती है उन सेल्स को। जी हाँ, मतलब वो स्टेंट, वो कॉरोनरी स्टेंट, उसमें कुछ इलेक्ट्रोकाइज किया गया उसे, और फिर उसको बाजू में डाला गया, वेन्स में डाला गया, और उसके बाद वो खुद कैंसर सेल्स को पहचानती है बॉडी में जो वहां से गुजरते हैं, और फिर उसके बाद पहचानने के बाद उन पर्टिकुलर सेल्स को वो इलेक्ट्रिक्यूट कर देती है। मतलब आई मीन वाओ वाओ, लाइक आई वाज लाइक वाओ, नाउ वी आर टॉकिंग। एंड डॉक्टर रजा वाज लाइक, यू नो व्हाट, I am so happy because this is so revolutionary. ये engineers का कमाल है, मतलब medical industry के साथ साथ ये engineers का कमाल है, क्योंकि उन engineers ने वो hundreds and millions of grant, जो कि 10 साल लगे इस पूरी की पूरी research को होने में, इसे बनने में, now it's finally here and it can go for treatment purposes also, मतलब जल्द ही ये treatment के लिए भी market में आ सकता है। Like imagine कीजिए, एक injection type चीज है, उसमें कैंसर का क्योर है, और वो इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि वो ब्लड सेल्स में खुद ही जो है वो कैंसर सेल्स को पहचान लेती है, और फिर उसके बाद उसे इलेक्ट्रिक्यूट कर देती है। लाओ, व्हाट एम लाइक, दिस साउंड्स लाइक अ साइंस फिक्शन मूवी, बट इट इजंट एक्चुअली, इट्स अ रियल थिंग। जी हाँ, एंड यू नो व्हाट अ रिमार्केबल रेवोल्यूशनरी रिसर्च, आई एम गोना से व्हाट अ रेवोल्यूशनरी रिसर्च। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक बहुत ही जबरदस्त और सेंस बनाने वाले मीम के बारे में। कल की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मेरे सामने आता है एक मीम जहां पर लिखी थी एक बड़े ही पते की बात, एंड आई वॉज लाइक या आई कैन टोटली रिलेट टू इट। एंड देन देयर वॉज सो मेनी पीपल इन द कॉमेंट सेक्शन, या वी कैन रिलेट टू। सो पीपल एवरीवेयर कैन रिलेट टू दैट मीम। जी हाँ, और वो क्या था आइए जरा आपको बताते हैं। वहां पे लिखा हुआ था, वेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंटर्स योर बैंक अकाउंट एंड द फूड एट होम स्टार्ट्स लुकिंग बोरिंग। जी हाँ, अगर आपने नहीं सुना मैं आपको फिर से बता दूं। वहां पे लिखा हुआ था कि वेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंटर्स योर बैंक अकाउंट एंड द फूड एट होम स्टार्ट्स लुकिंग बोरिंग। जी हाँ, मतलब थोड़े से पैसे क्या आ ना जाए हमारे अकाउंट में, हमको घर पे जो बना हुआ खाना एकदम बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। वो जो ताकत हमें वो बैंक अकाउंट में आए थोड़े से पैसे देते हैं ना, वो मतलब वो कॉन्फिडेंस ना उसको कोई बीट नहीं कर सकता कि ओ यू नो व्हाट, घर पे खाना कितना बोरिंग है, क्या बना दिया, ये नहीं खाऊंगा। अच्छा मैं ना कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। जी हाँ, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस टू मी। एंड गेस व्हाट, दिस इज मंथ की बिगिनिंग, मतलब महीना शुरू हो गया है, मतलब सैलरीज जो है वो ऑलमोस्ट लोगों की आ गई होंगी अकाउंट में। सो एवरीवन इज लाइक यू नो व्हाट, थोड़ा बाहर का हो जाए तो मजा आ जाए। सो यही होता है, वो मीम सेंस बना रहा था कि वेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंटर्स इन आर बैंक अकाउंट एंड द फूड एट होम स्टार्ट्स लुकिंग बोरिंग। मतलब वो सच में वो पैसे की ही सारी जो है वो करामात है। ऐसे हमें खाना बोरिंग नहीं लगेगा जब मंथ एंड चल रहा होता है, जब पैसे जो है वो थोड़ी जो है कड़की चल रही होती है। लेकिन जब पैसे आ जाते हैं तब हमें ऐसा लगता है, अरे हम तो शहंशाह है, अरे कौन सा खाना, ये नहीं खाएंगे हम तो ऑर्डर करके खाएंगे। जी हाँ, सो या लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल डू इट। आप मुझे बताइए कि आप भी ऐसा करते हो और आपके साथ भी ऐसा होता है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर अब शुरू करते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट, बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट जो है, और उसका नाम है ओल्ड इज गोल्ड। जी हाँ, पुराने गाने पुराने किस्से पूरी तरह से शुरू हो रहे हैं, तो आप भी शामिल हो जाइए अगर आपके पास कोई पुराना गाना है तो। यहाँ पर मेरी तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आपको हाइप अप करने के लिए गाना मैं आपको सुना।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नाउ यू नो व्हाट, ये गाना इतनी ज्यादा सेंस बनाता है। मतलब ये जिंदगी जो है वो सुहाना सफर है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट सफर ये सुहाना है। हम पैदा होते हैं, हम बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, कितना कुछ करते हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं, अपनी करियर को बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद भी, उसके दौरान भी हमारी मुलाकात लोगों से होती है, और ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर हम ऐसे वाले फेज में जाते हैं जब हमारी खुद की जिंदगी में कोई इंसान आ जाता है जो कि बहुत ही खास होता है हमारे लिए, और वो चीज हमें और भी ज्यादा अच्छा फील करवाती है। सो बेसिकली ये पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो ऐसे ही चलती है। मतलब आप कह सकते हो कि जिंदगी सफर है सुहाना। मतलब बीच बीच में हमें थोड़े बिट्स ऑफ सैडनेस जो मिलते हैं, तब हमें लगता है कि क्या चल रहा है जिंदगी में, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है। बट यू नो व्हाट, एवरीथिंग हैपेंस। बट जब खुशियां आती हैं तो गम भी आते हैं, गम आते हैं तो उसके बाद खुशियां फिर से आती हैं। जिंदगी यही है, सफर है सुहाना। आप इसे कैसे जी रहे हो, खुशी से जी रहे हो, सैडनेस से जी रहे हो, वो एक डिफरेंट बात है। जी हाँ, यहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि बहुत ही पसंदीदा मूवी से है, और ये मूवी है अफकोर्स हमारी फेवरेट गाइड। जी हाँ, इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये हिंदी सिनेमा की बहुत ही बड़ी हिट मूवी है। जी हाँ, इसमें वहीदा रहमान है, इसमें साथ में देवानंद साहब है, और क्या सब्जेक्ट है इस मूवी का। जी हाँ, लेकिन इस मूवी का गाना जो है वो मैं आपके लिए अपनी तरफ से प्ले नहीं कर रही हूँ, ऑल्दो आई ऑल्सो लाइक दिस सॉन्ग, बट ये गाने की फरमाइश आई है हमारी बहुत ही खास लिस्नर अमला जी की तरफ से, और वहां से ही हम इसे आपके लिए प्ले कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत गाने प्ले करवाने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए, और ये प्यारा सा माहौल हमारे प्रोग्राम में बनाने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, from the movie Guide.

0: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब आगे की बात हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक हम ले लेते हैं। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा ये क्या था? वेल, ये भी कुछ था, लेकिन पहले एक ब्रेक और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे हेमा मालिनी एंड धर्मेंद्र का एक बहुत ही जबरदस्त
1: बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q-Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
7: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों तो ये किस्सा बहुत फनी है, क्योंकि एक प्रोग्राम में एक इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यूअर ने हेमा मालिनी से पूछा कि आप और धर्मेंद्र जी का वो सिलसिला कब से शुरू हुआ, तो हेमा मालिनी बड़े ही अच्छे से कहती हैं कि हम लोग मिल तो बहुत पहले ही चुके थे, लेकिन उसके बाद हमारा रिश्ता जो है वो काफी बाद में शुरू हुआ। जी हाँ, और फिर उसके बाद हो गया जो आप सबको पता है। लेकिन जब इंटरव्यूअर सामने से बोलता है कि लेकिन हमने सुना है कि आपके पिताजी को बहुत ज्यादा एतराज था, तो हेमा मालिनी सामने से कहती है वेल ऑफकोर्स वो तो लाजमी ही था, क्योंकि धर्मेंद्र जो है वो पहले से शादीशुदा थे। तो सामने से इंटरव्यूअर जो है वो एक बड़ा ही फनी सा किस्सा जो है वो लेकर आते हैं। वो बोलते हैं, और इनफैक्ट हेमा मालिनी से पूछते भी हैं कि हमें पता चला है कि चरस मूवी की शूटिंग के दौरान, जी हाँ, चरस मूवी की शूटिंग के दौरान बोल्टा में उसकी शूटिंग हो रही थी, और वहां पर एक गाड़ी में जो है वो तीन लोगों को बैठना था। तो जब भी वो तीन लोगों के बैठने की बात आती थी तो आपके पिताजी कोशिश करते थे कि धर्मेंद्र और आपके बीच वो बैठे, मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि आपका कोई भी रिश्ता जो है वो इनके साथ रहे। ऑल्दो यू आर डूइंग मूवीज टुगेदर, लेकिन आपके पिताजी जो है वो पूरी तरह से देख रहे होते, पूरी तरह से नजर बनाए हुए होते थे कि ओके किसी भी हाल में ये दोनों साथ में नहीं बैठना चाहिए थे। जी हाँ, तो सामने से हेमा मालिनी बड़े ही हंसते हुए कहती है कि कहां से ले आते हैं आप लोगों को, कैसे पता चल जाता है इन किस्सों का। तो सामने से इंटरव्यूअर कहते हैं कि हमें पता चल जाता है, आप हमें ये बताइए कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो हेमा मालिनी कहती है कि हाँ सच में ऐसा हुआ था, सच में मेरे पिताजी ऐसी ही कोशिश कर रहे थे, जब हम टैक्सी में बैठे होते थे, गाड़ी में बैठे होते थे, तो वो हम दोनों के बीच में आके बैठ जाते थे। वेल वेल वेल, जी हाँ, यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन ये प्यारा सा किस्सा जो है बिल्कुल भी छोटा नहीं है, लेकिन हम इसको छोटा करके आपको सुनाने वाले हैं क्योंकि वक्त हो रहा है हमारे जाने का। सो ये किस्सा है देवानंद साहब और कल्पना कार्तिक का। कल्पना कार्तिक का नाम कल्पना कार्तिक नहीं था, उनका नाम पहले कुछ और था, लेकिन चेतन आनंद ने उनका नाम चेंज किया था। जी हाँ, ये वो वक्त था जब चेतन आनंद अपनी पिक्चर के लिए एक नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे और उनकी तलाश जाकर रुकती है एक खूबसूरत सी लड़की पर जो कि शिमला की रहने वाली थी। बस फिर क्या था, उन्होंने उन्हें चुन लिया और फिर उसके बाद उन्हें मुंबई बुलाया गया। कल्पना अपनी माँ के साथ पहली बार मुंबई आई थी और मुंबई का सारा माहौल, वहां की खूबसूरती उनके लिए बिल्कुल नहीं थी। वहां देवानंद साहब को चेतन आनंद कहते हैं कि जल्दी चलो, आज तुम्हें अपनी नई हीरोइन से मिलना है। जी हाँ, देवानंद जल्दी से तैयार होते हैं और वो चेतन आनंद को लेकर उस हॉस्टल में पहुंचते हैं जहां पर कल्पना अपनी माँ के साथ रुकी हुई थी। जी हाँ, कल्पना से मिलते ही दोनों जो है वो एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि कल्पना बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छे से वो बोलती भी थी। शी वॉज वेरी वेल स्पोकन पर्सन। अब यहाँ पर जुहू बीच से होके गाड़ी उनकी निकलती है और कल्पना के लिए वो जुहू बीच का खूबसूरत सा सीन एकदम नया था और वो इतना ज्यादा उन्हें खूबसूरत लगा कि उन्होंने कहा कि गाड़ी बस यहीं रुकिए जरा, और वो अपनी गाड़ी से उतरती हैं और वो सीधा जुहू बीच की तरफ जो है वो भागती हैं। वो अपना सैंडल उतारती हैं और देवानंद साहब को कहती हैं, देखिए देव साहब, देखते हैं आप मुझे पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। जी हाँ, अपने सैंडल को लेकर बीच पर भागती हुई कल्पना कार्तिक बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। देव साहब भी उसमें पूरी तरह से जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर कल्पना के पीछे वो भागने लगते हैं। कल्पना कार्तिक फटाफट पानी लेती हैं और उछालते हुए देव साहब की तरफ उसे अपने हाथों से देव साहब की तरफ उसे फेंकती हैं। देव साहब भी जवाब देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हंसने लग जाते हैं। फिर कल्पना कार्तिक रेत से उन्हें छेड़ने की कोशिश करती है और देव साहब भी उनके साथ वही करते हैं। फिर कल्पना कहती है कि ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगी कि मुझे ढूंढ के दिखाइए, तो आप मुझे ढूंढ के दिखाना। जी हाँ, और फिर उसके बाद कल्पना कार्तिक जो है झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। देव साहब जो है ये सारी चीज देख रहे थे, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा नहीं थी बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी अ बिग सुपरस्टार। और ऐसे में एक नई लड़की जो कि आपके साथ ऐसी हंसी ठिठोली और ऐसा मजाक कर रही है, वो बहुत अच्छा उन्हें लग रहा था। जी हाँ, देव साहब उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं और ऐसा दिखाते हैं उन्हें ऑलरेडी पता था कि वो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई है और वहां से उन्हें वो निकालते हैं छुपा हुआ, उनको जो है वो देखते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। और यहीं से ही कल्पना कार्तिक और देव साहा की वो ट्यूनिंग जो है वो शुरू हो जाती है। आप खुद सोचिए, कल्पना कार्तिक ने अपने करियर की बहुत स्टार्टिंग में ही देव साहब से शादी कर ली थी, आगे चलकर ये प्यारी सी हंसी ठिठोली जो है उनकी जिंदगी की कहानी बन जाती है जब देवानंद चुपके से कल्पना कार्तिक के साथ शादी कर लेते हैं। उसके साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। जी हाँ, ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि बहुत ही खूबसूरत है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: मुझे भी का अच्छा लगे।
1: तेरा इश्क बड़ा छोटा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन लायंस के कोच क्रिस फैगन ने दिया इस्तीफा। जी हां, ब्रिस्बेन से आज की सबसे बड़ी खेल खबर। ब्रिस्बेन लायंस को लगातार तीसरी बार AFL चैंपियन बनाने के बाद हेड कोच क्रिस फैगन ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की वर्ल्ड रैंकिंग में सुधार। जी हां, शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिस्बेन के लिए बड़ी उपलब्धि। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में छलांग लगाते हुए 73rd स्थान हासिल किया है। इसी के साथ ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर रनवे मेंटेनेंस का काम चालू। जी हां, अगर आप इस हफ्ते ब्रिस्बेन एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले हैं तो ध्यान दें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने रेगुलर मेंटेनेंस वर्क की जानकारी दी है। यात्रा पर निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का समय जरूर चेक कर लें। इसी के साथ इंडिजिनस बिजनेस मंथ की ब्रिस्बेन में शुरुआत। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही क्वींसलैंड में इंडिजिनस बिजनेस मंथ की शुरुआत हो चुकी है। ब्रिस्बेन में लोकल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये महीने कई प्रदर्शनी और नेटवर्किंग इवेंट आयोजित किए जाएंगे। वहीं ब्रिस्बेन में अक्टूबर का सुहाना मौसम। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही ब्रिस्बेन में मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन का तापमान 24 से 27 डिग्री के बीच रहा। वहीं हल्की धूप और हल्की हवा के साथ बाहर घूमने के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन था। वहीं क्वींसलैंड सरकार का नया क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। क्वींसलैंड राज्य सरकार ने ब्रिस्बेन और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नए विंड फार्म प्रोजेक्ट की आखिरी टर्बाइन स्थापित कर दी है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। जापान में चल रहे एशियन गेम्स में भारत का परचम लहरा रहा है। आज भारत की कुल मेडल गिनती बढ़कर 62 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें शूटिंग और आर्चरी में भारतीय खिलाड़ियों ने सोने के तमगे जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं डिजिटल इंडिया की बड़ी छलांग। एप्पल पे लॉन्च आईफोन और एप्पल वॉच यूजर्स के लिए आज बड़ी खबर है। भारत में एप्पल ने अपनी पेमेंट सर्विस एप्पल पे आधिकारिक तौर पर लागू कर दी है। वहीं वोटर आईडी फॉर्म बदलने पर चुनाव आयोग का फैसला। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म 6 में होने वाले कुछ तकनीकी बदलावों में बड़ा कदम उठाया है। राजनीतिक दलों की आपत्तियों के बाद आयोग ने साफ किया है कि जिन राज्यों में वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है वहां कोई नया बदलाव लागू नहीं होगा। वहीं IIT मद्रास और बिट्स पिलानी के बीच बड़ा समझौता। शिक्षा और रिजर्व रिसर्च के क्षेत्र में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। देश के दो बड़े संस्थानों IIT मद्रास और बिट्स पिलानी ने 5 साल के लिए एक अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। वहीं मिजोरम में भारी बारिश के बाद ट्रेन रूट में बदलाव। मिजोरम के बैराबी सेरांग रेल मार्ग पर भारी बारिश के कारण पटरियों पर पानी और मलबे का जमाव हो गया है। रेल विभाग ने सुरक्षा के तौर पर 4 ट्रेनों का रूट छोटा किया है। इसी के साथ अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले एयरलाइन क्रू की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टला। जी हां, दुबई से आ रही एक इंटरनेशनल फ्लाइट में क्रू मेंबर्स की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। कॉकपिट में इमरजेंसी के बावजूद पायलट और क्रू ने सुरक्षित लैंडिंग कराई। दुनिया भर में इस भारतीय पायलट के साहस की तारीफ हो रही है। वहीं गूगल ने नए AI मॉडल पर सुरक्षा बढ़ाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गूगल ने अपने नए AI मॉडल को आम जनता के लिए रिलीज करने से पहले सरकारी सुरक्षा जांच के लिए भेजा है। कंपनी का कहना है कि सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ही इसे मार्केट में उतारा जाएगा। वहीं दुनिया भर में मनाया जा रहा वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। जी हां, आज 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वेजिटेरियन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जा रहा है। सेहतमंद जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण और शाकाहारी भोजन के फायदों को लेकर आज दुनिया भर में कई तरह के इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सिंगापुर ने युवाओं के लिए शुरू की नई पहल। घटती जन्म दर और शादी की कम होती दरों से निपटने के लिए सिंगापुर सरकार ने एक अनोखा कदम उठाया है। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष ऑफिशियल नेटवर्किंग ऐप लॉन्च किया है ताकि वे अपना सही जीवन साथी चुन सके। इसके साथ अमेरिका ने सीनियर मिलिट्री पदों में 20% कटौती का किया ऐलान। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने आज एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। इसके तहत सेना के बड़े अधिकारियों की संख्या में 20% तक की कटौती की जाएगी और ध्यान टेक्नोलॉजी व रोबोटिक्स पर ज्यादा दिया जाएगा। वहीं यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों पर चर्चा। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच एक व्यापारिक समझौतों पर बातचीत का दौर फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के नेताओं का कहना है कि वे व्यापार और सीमा सुरक्षा को आसान बनाने के लिए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले एशियन गेम्स, भारत को शूटिंग और आर्चरी में गोल्ड। एशियन गेम्स के 13वें दिन भारत की मिक्स शूटिंग और तीरंदाजी टीमों में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किए। वहीं रोनाल्डो ने नेशनल फुटबॉल कैंप से लिया ब्रेक। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नेशंस लीग कैंप से अस्थायी रूप से ब्रेक ले लिया है। उन्होंने कहा कि वे अपनी आगे की योजनाओं के बारे में सही समय आने पर फैंस के साथ जानकारी साझा करेंगे। वहीं एशियन गेम्स मेडल तालिका में चीन का दबदबा कायम। एशियन गेम्स 2026 की मेडल टेबल में चीन 150 से ज्यादा गोल्ड मेडल के साथ अपने पहले नंबर पर बना हुआ है। वहीं आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियां शुरू। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अगले साल होने वाले पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआती तैयारियों को जायजा लिया है। इसी के साथ टेनिस में नए खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ियों ने इस हफ्ते अपनी चमक दिखाई है। दिग्गजों को हराकर नए चेहरे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं, जिससे कोर्ट पर रोमांच काफी बढ़ गया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
3: राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
6: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
5: अरे वाह, इनका पता बताना।
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026 डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेंबर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन। ए विलेन!
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इस गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दियां गलियां दी धुन प्रस्तुत कीती है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया ते निशांत नागर ने इसनू तैयार कीता। ए गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी थानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इसकी शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला राग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो। पर मैं थानू इस दी कहानी मैं सुना दी, गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

0: दौरान साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: बियॉन्ड व्हाट यू सी, Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, transfer ready for the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
2: हनी, ये तुम कहां ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
1: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
2: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਹਾਂ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
4: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365। दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रेस सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रेस सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। आखिर ऐसा क्या है मुझमें, क्या है मुझमें?

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज भगवान से है। तुम ईसा कहो वो वाहे गुरु, हम सब की अरज अल्लाह से है। कितनी सच बात है ना दोस्तों, हम सब अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। लेकिन आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, उस धर्म को मानने के पीछे है एक ही मकसद, अपनी प्रार्थना को उस शक्ति तक पहुंचाना जो हमारे हिसाब से इस संसार का निर्माण कर रही है, उसे चला रही है। और उसी शक्ति की, उसी सर्वशक्तिमान की हम प्रार्थना करते हैं हर सुबह अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग नामों से। लेकिन नाम चाहे कुछ भी दे दीजिए, आपकी प्रार्थना एक ही है, उस शक्ति से है जो ये दुनिया चला रही है, और उसी शक्ति को समर्पित है यज्ञ लगाना। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं जीवन आधार, और इस सफर में आज से हर रोज आपकी हम सफर सताक्षी आपका साथ निभाती रहेगी। जब तक आप उस ईश्वर को मैं के साथ जोड़ते हैं, जब तक आप में मैं जिंदा रहता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें उस शक्ति को पा नहीं सकते, और कितना भी आप दुआ मांग लें, आप प्रार्थना कर लें, आप अरदास लगा लें, लेकिन आप अपनी आवाज उस तक पहुंचा नहीं सकते हैं। उसकी आवाज सुनने का और अपनी आवाज उस तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, अपने मैं को मिटा देना। तो मिटा दीजिए अपने मैं को और ढूंढ लीजिए उस सर्वशक्तिमान को। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

न्यूज वाणी 1701 AM पर जीवन का आधार जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ और हम इस जीवन आधार के माध्यम से जीवन के ही सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए गुरुवाणी के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए रेडियो प्रसवानी पर हमारे साथ।

ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल मूरत अजुनी सभम गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसे भी सच सोचे सोचे ना होवे जो सोची लाख बार छुपे छुप ना होवे यानी एक ही ईश्वर है और उसी का नाम सच है वही सबको बनाने वाला है उसकी कोई मूरत नहीं है वो किसी का दुश्मन नहीं है जन्म मरण से दूर है और अपनी सत्ता कायम रखने वाला है ऐसे ही परमात्मा को गुरु नानक जी ने अकाल पुरख कहा है जिसकी शरण में गुरु के बिना जाना संभव नहीं है आइए उसी ईश्वर को नमन करते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

तो श्रोताओं, ये था आज हमारा आपका आज की सुबह साथ। कल इसी साथ को लेकर आगे भी साथ साथ चलेंगे। और अपना जो रिश्ता है वो ईश्वर से जोड़े रखिए। उस शक्ति को जिसमें भी आप जिस भी नाम से माने विश्वास करते रहिए, क्योंकि वही है जिसने आपको थामा है, आपके अपनों को थामा है। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, क्या हाल है मेरी ब्यूटीफुल ब्रिस्बेन वालों। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी। फ्राइडे आ गया है जी, मतलब वीकेंड की खुशबू हवा में ऑलरेडी आ चुकी है। आज का सिंपल सा रिमाइंडर दोस्तों ये है कि वीकेंड का ना वेट करते करते वेडनेसडे की खूबसूरती मिस मत कर देना। आज जो भी प्लान है, ऑफिस, स्कूल, जॉब, बिजनेस, ट्रैवल या फिर बस घर के काम, म्यूजिक के साथ स्टार्ट कीजिए और मूड को रखिए एकदम पॉजिटिव। और हाँ जी, हर शो में बोलती हूँ, चाय रेडी है ना, तो चाय का सिप, कॉफी का सिप जरूर लीजिए। और दोस्तों वॉल्यूम कम मत करना, क्योंकि रेडियो ब्रिस्बानी वॉल्यूम अप करने के लिए बना है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम। तो आइए इसी के साथ हम करते हैं शुरुआत इस प्रोग्राम के, इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बानी।

हाँ जी, तो कैसा लगा ये प्यारा प्यारा सा सॉन्ग? आशा करती हूँ ये सॉन्ग आप सभी को एनर्जी लेकर जरूर आया होगा, और हमारी एनर्जी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव वाइब्स खुद के अंदर लाना और फैलाना बहुत जरूरी है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं और दोस्तों को और सामने वालों को पॉजिटिव करते हैं ना, तो हर इंसान हर लोग हमारे साथ बैठना भी पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमारे पॉजिटिव ऑरा को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि हर कोई हर समस्या से दुखी है, अपने घर से लेकर अपने पर्सनल लाइफ से लेकर हर कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। तो इसीलिए पॉजिटिव ऐसे रहिए, अपना ऑरा ऐसा रखिए कि लोग आप सभी से बात करना पसंद करें, आपके साथ बैठना पसंद करें। और पॉजिटिव बहुत कम लोग ही करते हैं एक दूसरे को, आजकल नेगेटिविटी कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है, लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

चलिए जी, अब बात करते हैं ब्रिस्बेन की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स की। ब्रिस्बेन में 2027 में लैकी नेले की जो कॉलिंगवुड मूव है उसको लेकर AFL वर्ल्ड में काफी डिस्कशन है। ब्रिस्बेन लॉयंस ने उनके क्लब से डिपार्चर कंफर्म किया है। और ब्रिस्बेन के फ्यूचर की बात करें तो ब्रिस्बेन गेम स्टेडियम प्रोजेक्ट भी हेडलाइंस में है। स्टेडियम कंस्ट्रक्शन के लिए एक कंसोर्टियम को सोल फाइनलिस्ट अनाउंस किया गया है। क्विंसलैंड में यूथ डिटेंशन वर्कर्स और गवर्नमेंट के बीच पे और वर्किंग कंडीशन को लेकर भी नेगोशिएशंस भी एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट तक पहुंची है। यानी कि ब्रिस्बेन और क्विंसलैंड में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल इश्यूज सब कुछ हेडलाइंस में बना हुआ है। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो प्रसवानी में दोस्तों, जहाँ इतनी बात की है तो भाई वेदर की बात भी कर ही लेते हैं। अक्टूबर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और ब्रिस्बेन में स्प्रिंग का मूड है, यानी कि फ्राइडे के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो साउथ ईस्टर्न एरियाज है उसमें रेन और थंडर स्टॉर्म्स का फोरकास्ट है, जबकि ब्रिस्बेन का वेदर जो है कंपैरेटिवली जो है अलग पैटर्न में रह सकता है। तो घर से निकलते वक्त एक बार लोकल फोरकास्ट चेक जरूर कर लेना, स्पेशली अगर वीकेंड में आउटडोर प्लान्स है। वैसे आपके ब्रिस्बेन में आज वेदर कैसा है भाई, हमें मैसेज कीजिए।

0: रेनी क्लाउड या फिर रेनी, जल्दी जल्दी मैसेज करके बताइए। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।
1: बड़े ही शान से जीता था पहले, बड़े ही शान से जीता था पहले, मैं भूले से नहीं पीता था पहले।
2: हंस के देखता क्या है कांच के पियालों में, हंस के देखता क्या है कांच के पियालों में, आग का समंदर है मेरे दिल के छालों में।

तेरा इकरार झूठा है, तेरा ये प्यार झूठा है, तेरा इकरार झूठा है, तेरा ये प्यार झूठा है, तू धोखेबाज है, अपना बना के हमको लूटा है, समझ में कुछ नहीं आता, जिए किसके सहारे पर, समझ में कुछ नहीं आता, जिए किसके सहारे पर, कोई अपना नहीं है, जब से तेरा साथ छूटा है।

वफा की राह को आसान समझ लिया, हमने वफा की राह को आसान समझ लिया, कांटों की वादियों को गुलिस्तान समझ लिया, हम इसको आशिकी कहें या सादगी कहें, हम इसको आशिकी कहें या सादगी कहें, कातिल को हमने अपना मेहरबान समझ लिया।

आप सब सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो चलिए अब थोड़ा सा बॉलीवुड तड़का हो जाए। फिल्म इंडस्ट्री में अक्टूबर का महीना फेस्टिवल्स, रिलीजेज और सेलिब्रिटी अपडेट्स की वजह से ऑलरेडी एक्साइटिंग रहने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉलीवुड में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि क्रेज बना हुआ है 90s के सॉन्ग्स हो, ओल्ड स्कूल रोमांस हो या फिर वो आइकॉनिक डायलॉग्स क्यों ना हो। कुछ चीजें ओल्ड नहीं होती, बस एवरग्रीन हो जाती है। आपका फेवरेट 90s बॉलीवुड सॉन्ग कौन सा है? आज ब्रिस्वानी पर अपनी च्वाइस जरूर बताना। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ आइए अगली न्यूज की बात करते हैं। एक क्वींसलैंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को साइबर अटैक में अराउंड $8 लाख का जो फाइनेंशियल लॉस है वो हुआ है। रिव्यू के मुताबिक गवर्नमेंट डाटा या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिसवानी में आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी में प्रोग्राम जाने का सफर और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जाने जैन। सो ब्रिसबेन अब वक्त हो गया है आपसे भाई टाटा बाय बाय कहने का। जी हाँ, याद रखिए दोस्तों, हमेशा अपने मूड को पॉजिटिव रखिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो बहुत लोग हमसे बात करना, हमारे साथ बैठना रहना पसंद करते हैं। स्माइल कीजिए, म्यूजिक सुनिए और अपना फ्राइडे ब्यूटीफुल बनाइए। अब मंडे हमारी मुलाकात होगी जाने के सफर प्रोग्राम में और कोशिश करूंगी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ ड्राइव कीजिए और रेडियो ब्रिसवानी को सुनते रहिए एंड हैव अ ब्यूटीफुल फ्राइडे ब्रिसबेन। टेक केयर, बाय बाय।

साक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 FM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आसमान में हाईजैक का डर, सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों ने गाने तालियों से मनाया जश्न। दुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई के एक यात्री विमान की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एयरलाइन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और उनकी सही सलामत मौजूदगी की पुष्टि हो गई है। एयरलाइन ने कहा, हमारी टीमें संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। जैसे ही पक्की और अधिक जानकारी मिलेगी, आगे अपडेट दी जाएगी। लंदन कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ हनी ट्रैप का मुकदमा मेहुल चौकसी ने लिया वापस। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने लंदन हाई कोर्ट में भारत सरकार और यूके में रहने वाली हंगेरियन महिला बारबरा जारबिक के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है। मेहुल चौकसी ने आरोप लगाया था कि 23 मई 2021 को एंटीगुआ में हनी ट्रैप की साजिश के तहत उनका अपहरण किया गया था और हर्जाने के तौर पर करोड़ों पाउंड का दावा किया था। दो दशकों बाद इराक से अमेरिकी सेना की विदाई। इराक में पिछले दो दशकों से चला रहा अमेरिकी सैन्य दखल अब आधिकारिक तौर पर समाप्त होने जा रहा है। अमेरिकी सेना इराक में अपने आखिरी बचे सैन्य अड्डों को भी पूरी तरह खाली कर रही है। इसके साथ ही 2003 के अमेरिकी आक्रामक से शुरू हुआ सैन्य मौजूदगी का ये लंबा अध्याय हमेशा के लिए अब बंद हो गया है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। मोदी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले। केंद्रीय कैबिनेट ने खेती, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी आवाजाही से जुड़े तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए सभी तय रबी की फसलों के लिए ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.86 लाख करोड़ रुपए की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 3 योजना और दिल्ली के लिए टेक्नोलॉजी आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। मंगलुरु की ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद लगी आग, कई घरों की खिड़कियां टूटी, महसूस हुए भूकंप जैसे झटके। कर्नाटक के मंगलुरु में जो कटे के पास MRPL ऑयल रिफाइनरी में जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके से घर हिल गए और लोगों को झटके महसूस हुए। इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी PTI ने स्थानीय लोगों के हवाले से दी है। आइए जुड़ते हैं अब खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। पाकिस्तान पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, जो अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना करते रहते हैं, उन्हें बोर्ड में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अख्तर कई बार क्रिकेट बोर्ड पर तीखा हमला करते हुए देखे गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के इस खराब हालात के लिए भी बोर्ड को ही जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन उन्हें अब PCB अहम भूमिका दे सकता है। जी आपको बता दें कि शोएब अख्तर को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आने का न्योता मिला था और इसीलिए अब उनकी बोर्ड में वापसी हो सकती है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नीलम का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। 5 मिनट हो गए हैं 7 बजकर और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं सुबह का सफर में। अभी से लेकर 9 बजे तक हमारा ये खूबसूरत साथ होने वाला है दोस्तों। आज फ्राइडे है 2 अक्टूबर 2026 की सुबह। एक्चुअली इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मॉर्निंग। बाहर निकले हुए हैं आप, शायद पार्क्स में हैं या फिर अपने गार्डन में हैं या फिर ऐसे ही घर पर बैठे हैं गर्मा गर्म चाय के साथ ट्यून इन हुए हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे। और एक्चुअली आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। ट्रैफिक अपडेट हमारे पास एकदम से नहीं है, लेकिन कुछ सर्च करने के बाद हमें पता चला कि रिसेंट सिग्नल फॉल्ट हैजार्ड हैज बीन रिपोर्टेड, और ये हैमिल्टन रोड में था। और सेंटेनरी मोटरवे आप तो जानते हैं, और फ्रेम टू सिनेमन रोड एंड कॉक्स रोड इज करंटली क्लोज ड्यू टू प्लान रोड वर्क्स। ओवरनाइट अकेशा रिज आई थिंक यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, और क्रैश यूनिट इन्वेस्टिगेटर्स आर स्टिल आई थिंक वर्किंग ऑन इट। और लेकिन अगर आप रास्ते पर हैं, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और हौले हौले सफर कीजिएगा। अभी भी बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो ढेर लोग वेरी हैप्पी हैप्पी मूड में रास्ते पर रहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम आप बच्चों की बातें सुनते हैं, कभी कभी आपका ध्यान भटक जाता है, तो आप रास्ते से अपने जो नज़र है वो हटाए, आपके कंसंट्रेशन फोकस नहीं करते हैं, तो यू नो देयर चांसेस कि आप यू नो ध्यान ना दें ट्रैफिक पर और रास्ते पर अपने ड्राइविंग पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रास्ते पर है आप तो ये ज़रूरी है कि आप ध्यान दें, क्योंकि आपकी सेफ्टी प्लस अदर मोटरिस्ट जो आपके साथ सफ़र कर रहे हैं उनकी भी सोर्ट ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, कि आप सेफ ड्राइविंग करें और जहाँ भी आपको पहुँचना है आप सही सलामत पहुँचे। छुट्टी का टाइम है, एन्जॉय करना तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। और अगर आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू और ढेर सारे विशेज एंड ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपके लिए। और एनी स्पेशल ओकेजन आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, उसको शायद बहुत खास दिन है आपके लिए, तो बेस्ट विशेज देना चाहेंगे हम आपको और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

से बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। सुबह का सफर में और आगे बढ़ते हैं। आज आपके ब्रेकफास्ट टेबल पे क्या है और क्या बनाया है आपने? बच्चे भी घर पर है या फिर शायद उनकी पसंद का कुछ बना रहे हैं आप, या सीरियल ही पसंद करते हैं, जो भी है आप आई एम श्योर अपने अपने बेस्ट दे रहे हो उनको प्रोवाइड करने के लिए। एंड कुछ ना कुछ तो मज़ेदार बनाया ही होगा। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो टोस्ट पसंद करते हैं, तो अगर आप एवोकाडो टोस्ट पसंद करते हैं, तो हमारे पास एक रेसिपी है, और नॉट अ रेसिपी, जस्ट मे बी टिप एज टू हाउ टू मे बी हैव एवोकाडो टोस्ट अपनी पसंद के, लेकिन विद अ डिफरेंट टॉपिंग। तो एवोकाडो टोस्ट अगर आप पसंद है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड खाते हो या सावाडो ब्रेड खाते हो। वैसे दोनों में थोड़ा मोरा तो अंदर है ही। तो जो सावाडो ब्रेड है, इसको लॉन्ग प्रोसेस में फर्मेंट किया जाता है, और डायबिटिक अगर आप है तो उसके कारण जो फर्मेंटेशन प्रोसेस रहता है इसमें, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये लोअर कर देता है। तो अगर आप इसके खाते हैं तो आपका जो शुगर लेवल है स्लोली स्लोली राइज होता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप इससे चूज करते हैं एज अ टोस्ट, और अपने डेली अपने फूड इनटेक में इंक्लूड करते हैं। और वैसे ब्रेड पसंद है तो भी वो भी अच्छा है। अगर वाइट ब्रेड पसंद करते हैं और ऐसा और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप मे बी होल मील या होल ग्रेन यू नो स्वैप कर सकते हैं। सो यू कैन गो देयर। और एवोकाडो की तरफ अगर आप देखते हैं, तो एवोकाडो जो लाते हैं और उसको अच्छी तरह से आप मैश कर लें, पहले तो आप चाहे आप ऑलिव ऑयल पसंद करें या फिर सावाडो अगर यूज़ करते हैं, तो उसको आप तवे पर आप उसको अच्छी तरह से टोस्ट कर सकते हैं। एवोकाडो प्रिपेयर करने के लिए आप उसमें छोटी छोटी फाइनली कटे हुए आप धनिया डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं एकदम फाइनली, और नमक के जगह पर आप लेमन जूस थोड़ा सा स्क्वीज कर दें उस पर, एंड देन यू कैन स्प्रेड इट ऑन योर टोस्ट। लेकिन अगर ये सादा सादा है, लेकिन इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए अगर आप एग्स यूज़ करना चाहते हैं, तो पोच कर सकते हैं एग्स और फिर अपने एवोकाडो टोस्ट पर खा सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप एग्स नहीं खाते, कंज्यूम नहीं करते हैं, तो मशरूम अगर आप लाएं, मशरूम को जैसे भी आप प्रिपेयर करते हैं काटते हैं, एंड देन विद अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल आप थोड़े से डालें, एक ऑलमोस्ट एक टीस्पून से कम, कि थोड़ा वेट हो जाए जो क्या कहते हैं मशरूम। एंड उसमें थोड़े से स्लाइस अनियंस भी आप डाल सकते हैं, नमक चिली डाल सकते हैं, और थोड़ा से हिंट ऑफ बटर डाल सकते हैं आप। दैट्स द कैच एंड दैट्स द क्रीमी मशरूम। अच्छी तरह से आप उसको थोड़ा देर के लिए पका लें, एंड देन ये आप अपने एवोकाडो के ऊपर डालकर खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। तो दैट्स व्हाट्स ऑन आवर ब्रेकफास्ट टेबल टुडे दोस्तों। और ये हेल्थी भी है, और ढेर सारी खूबियां हैं एवोकाडो का। ओलिव ऑयल सावाडो लेते हैं और होल मील ब्रेड लेते हैं, वाइट ब्रेड मे बी अगर आपको पसंद है, लेकिन मे बी नॉट। और फिर अपने जो आपका जो बेवरेज है वो आप चूज करें, लाल चाय, कलर जो भी हो दोस्तों चाय का, लाल बोले या ब्लैक बोले या फिर वाइट बोले, डर्टी चाय बोले, चाय लाटे बोले, जो भी बोले, लेकिन दैट्स व्हाट्स ऑन आवर ब्रेकफास्ट टेबल टुडे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
12: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
11: ऐसा क्या खास है वहाँ?
12: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
11: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
12: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
13: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं. और अभी हाल ही में हमारी मुलाकात एक टीचर से हुई, और जो प्रेप या को पढ़ाती है और बच्चे फाउंडेशन लेवल पर उनकी टीचर है. सो बेसिकली बातों में मैंने कहा कि हाउ डू यू फाइंड टीचिंग और कैसा लग रहा है ना. एंड देन शी वाज सेइंग कि 22 पीपल्स है उसके क्लास में, एंड बच्चे आजकल ऐसे हो गए हैं कि पेंसिल्स पकड़ना नहीं जानते. सो एंड इतनी यू गिव देम यू नो आईपैड, वो नेविगेट करेंगे कोई भी पेज, एंड लेकिन अगर उनको लिखने को कहें वो लिखना नहीं जानते, पेंसिल नहीं पकड़ना जानते. अच्छा, लिखना बहुत दूर की बात है कि सिंस इट्स अ प्रेप, पेंसिल बीच से पकड़ते हैं. सो एंड आई वाज थिंकिंग सच अ टफ वर्क फॉर अ टीचर कि उतनी बच्चों को उस तरह से सिखाना कि कैसे पकड़ते हैं, लिखते हैं, वर्ड्स सुनने में कैसा होता है. एंड तो डिफिकल्टीज तो बता रही थी. एंड बच्चे सिंस अभी आजकल ऐसा हो गया है कि स्कूल क्लासेस में ऐसे होते हैं कि अगर बच्चे बदमाशियां करते हैं और टेंट्रम्स दिखाते हैं, तो वो टेंट्रम जो कर रहा है रूम के अंदर, वो रूम के अंदर रहेगा और सारे और बच्चे जो होते हैं उनको बाहर निकलना पड़ता है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. एंड तो जब बातें हो रही थी तो हमने उनसे कहा कि वाई इज चिल्ड्रन ऐसे होते. पहले हमें अगर अगर हमें वॉशरूम जाना होता था तो टीचर से परमिशन मांगते थे, हाथ ऊपर करते थे, कैन आई गो टू द टॉयलेट मैम, एंड देन ऑफ कोर्स टीचर आपको बताती थी कि ऑफ कोर्स यू कैन गो. बट यहाँ पर बच्चे ऐसे हैं, वो कह रही थी कि मन की उठते हैं, मन की जाते हैं, बताते नहीं हैं. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे डोंट नो. बातें करते हैं, दे डोंट लुक एट यू. तो सो वी वर कमिंग टू दिस कंक्लूजन कि ऑफ कोर्स आप सभी जानते हैं कि कंक्लूजन क्या है, कि जो बच्चे हैं इतना धैर्य जो समय होता है अपने आईपैड्स पे, फोन्स पे बिताते हैं और उनसे ऊपर नहीं ताकते हैं, दिल वहीं में उसका ध्यान रहता है फुल टाइम. एंड तो जो वर्बल क्यूज होते हैं, नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, किसी से बात करते हैं, जब आप ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में किसी से आप बात करते हैं तो दूसरे के जो आव भाव होता है फेस पर शो करता है, एंड यू नो कि अच्छा चलो ऐसा फील करते हैं ऐसे बात में, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वर्ड्स मेक इम्पैक्ट ऑन द अदर पर्सन. बट जो इंसान किसी को देखता नहीं है तो वो कैसे समझेगा? तो ऑल दीज थिंग्स, तो दीज थिंग्स चिल्ड्रन डोंट नो. और ये ढेर सारा टाइम जब घर पर बिताते हैं, एंड तो पेरेंट्स क्या करते हैं, सिंस ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा चलो कि पेरेंट्स टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं बट वर्क भी तो करना पड़ता है. लेकिन देर शुड बी सम वे जहां पर आप बच्चों को कम टाइम दें ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर बिता सके. सो देर शुड बी लेस ऑफ दैट, मोर ऑफ इंटरेक्शन, मोर ऑफ प्लेइंग. बच्चे घर पर है भी ध्यान रखे कि क्या कर रहे हैं, यू नो, वर्क दे, कोई काम सीखे, यू नो, घर में कोई काम करे, छोटी मोटी डस्टिंग हो जाए, यू नो, या मोपिंग हो जाए, या यू नो, जो भी काम आप सोचे, कार वॉश हो जाए, तो दीज का वीडिंग इन द गार्डन, तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज होता है, एंड बच्चे का जो दिमाग है वो अलग रहता है, बातें करे. सो ऑल दीज थिंग्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आई एम अफ्रेड कि अगर ऐसे ही हो कि बच्चे आपको देखकर ना बात करे, समझे भी नहीं कि अगर कोई बात आप वो आपसे बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट दूसरे इंसान पर कैसा होता है, वो बच्चे हैं दैट्स फाइन, बट अगर ये कंटिन्यू होता है एज अ अडल्ट, देन हाउ डज दैट वर्क. तो इसके मतलब ऐसा होता है कि आप कुछ भी बोलें, डजंट रियली मैटर कि आपने, आप जानते भी नहीं कि क्या बोल रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं, एंड यू जस्ट फोकस्ड ऑन थिंग्स. आप नीचे देखते हैं, आप यू नो, कम्युनिकेशन आप बेसिक चीज नहीं अच्छी तरह से सीखते हैं. सो इट्स टफ वर्क फॉर द टीचर्स. या जो टीचर्स है एंड डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन पेरेंट्स का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं दोस्तों. चलिए आगे बढ़ते हैं.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: सासों की माला पे सिमरू मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th October 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430-228-009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: दोस्तों 4 मिनट हो गए हैं, 8:01 का सफर बाकी है हमारे साथ और अभी भी जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका। वैसे ब्रिस्बेन में 17 डिग्रीज अभी है और चलिए आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे, और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास समंदर पर एक कविता है, और चलिए सुनते हैं। कुछ ऐसे जाता है, अगर समंदर का पानी खारा ना होता तो शायद आज वो इतना सारा ना होता। हर कोई उसे अपना कह रहा होता, फिर शायद उसका खुद का कोई किनारा ना होता। कोई मोहब्बत के नाम पर भर ले जाता, कोई जरूरत के नाम पे खाली कर जाता। दिया हुआ उसे फिर मांगना पड़ता, बिन मांगे उसका गुजारा ना होता। उसकी खूबसूरती को देख फिर कोई सुकून ना पाता, बस उसे इस्तेमाल करने में लग जाता। शायद इसीलिए समंदर ने ये कमी खुद में बरकरार रखी है, कुछ इस तरह उसने अपनी गहराई संभाल रखी है। दोस्तों ये कविता पढ़कर मुझे ये सोच में आया कि जैसे ट्रंप अभी आइसलैंड ग्रीनलैंड जो भी है उसके पीछे पड़ा हुआ था, अगर समंदर खारा ना होता तो फिर वो भी डेंजर में होता। आई बिलीव दैट राइट नाउ। चलिए दोस्तों एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: वेलकम बैक दोस्तों, 16 after 8 और सुबह का सफर में आप शामिल हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हैं आप, स्वागत कर लेते हैं आपका। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो मिलने के बाद हम फील करते हैं, बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं, यू नो, एंड एज इफ ऐसा होता है कि पूरा जो ताकत था, मेंटल एग्जॉशन हो जाता है कि आप बात करते हैं या फिर यू नो किसी चीज को लेकर बात करते हैं या फिर शायद अपने आप को बताना, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने बात को, एंड देन जो आप सामने वाला है वो समझता नहीं है, एंड देन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर बात होती है या हीटेड कॉन्वर्सेशंस होते हैं। तो दोस्तों, जो लोग, जो कॉन्वर्सेशन आपको ड्रेन करे, उनसे कैसे बचे, और तो वही लोगों के साथ अपना टाइम बिताए जो आपको एनरिच करते हैं मेंटली एंड एम्पावर करते हैं। और अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो आर्ग्यूमेंट में साबित करने की कोशिश ना करें, यू नो, काम ओवर ड्रामा चूज करें। अगर कोई कह रहा है कि उसका कौवा सफेद है तो उसका कौवा सफेद ही रहने दीजिए और अपनी चाय की चुस्की लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह आई थिंक यू कैन प्रोटेक्ट योर एनर्जी। एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज,

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे और आधे घंटे का सफर बाकी है हमारे और आपके साथ का। याद दिला दे आपको दोस्तों कि 9 पर जुम्मा प्रोग्राम है और आज 2 अक्टूबर है, तो आज है महात्मा गांधी का 157th बर्थ एनिवर्सरी। तो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में एंड उनकी जो मृत्यु है हुई थी 1948 में। एंड आप तो महात्मा गांधी को जी को जानते ही हैं और कितनी बड़ी बड़ी काम किए थे उन्होंने, इनिशिएटेड फ्रीडम मूवमेंट और सॉल्ट मार्च की थी उन्होंने एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की थी। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में।

दोस्तों सुबह का सफर में आप शामिल हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। वैसे हमेशा हमारा फोकस रहता है ऑल द थिंग्स दैट्स हैपनिंग दैट्स बैड हैपनिंग अराउंड अस, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो स्लोली एंड कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे ले लिया जाए फ्लोरिडा में फ्लोरिडा बैंस कन्विक्टेड एनिमल अब्यूजेस फ्रॉम ओनिंग पेट्स। तो ये एक चेंज हुआ है। पैंडास जो एक्सटिंक्ट होने वाले थे आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, वन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज ये एक है। नेदरलैंड्स में इज क्लोजिंग प्रिजन्स एज फॉलिंग क्राइम रेट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ इनमेट्स सिंस 2009 मोर देन 20 प्रिजन्स हैव क्लोज्ड। एंड सबसे बेस्ट वाला ये है, इन नेदरलैंड्स दे क्रिएटेड अ विलेज फॉर पीपल विद डिमेंशिया वेयर केयर गिवर्स एक्ट एज नेबर्स एंड शॉपकीपर्स टू अवॉइड अ हॉस्पिटल लाइक एटमोस्फियर। दिस इज आई थिंक बेस्ट थिंग एवर। एंड ये आई थिंक छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, एक्चुअली दीज आर बिग चेंजेस इन लाइफ। एंड हमारा हमेशा ध्यान में रहता है कि all the things that's bad happening around us, and ये जो चीज़ें होती है इनको हम इन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर शायद हम इस पर फोकस करने लगे तो जो हमारा आगे आने वाला जो स्ट्रेस है, जो चिंता लेकर हम बैठे रहते हैं, वो शायद कम हो जाएगा। अपनी सोच है दोस्तों, अपने अपने सोच पर आप कायम रहें, जो भी आपको अच्छा लगे।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: वेलकम बैक दोस्तों। वैसे कहते हैं सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप जो सुविधा है सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। दोस्तों दिस इज सो ट्रू। और जो चीजें हम देखते हैं हमें हैप्पीनेस देती है, वी थिंक हमें हैप्पीनेस देती है, लेकिन हमें शांति देती है नहीं। और ये कहीं मैंने गोपाल दास आई थिंक उसकी पॉडकास्ट मैंने सुनी थी, और वो कह रहे थे इसके बारे में, जो चीज़ें घर जैसे आपने बड़ा वाला घर बनाया और सभी चीज़ उसमें है ऑटोमेटिक, एक्चुअली आई लव सेइंग दैट, एंड ये सब कुछ आपने अपनी पसंद का बनवाया है, लेकिन उसके भी अंदर जब आप रहते हो वो शांति आपको मिलती है। सुविधाओं का सब कुछ है लेकिन शांति है ये नहीं। सो फोन एकदम आईफोन 18 आपने ले ली, लेकिन कॉन्वर्सेशंस क्या करते हैं उस पर आप, यू नो कॉन्वर्सेशंस में सुकून मिलता है आपको? किस तरह के कॉन्वर्सेशंस करते हैं, क्या आप करते हैं? यू नो बड्डी वाली जो आपकी गाय नॉट गाय कार है, कार में जाते हैं लेकिन जाते कहाँ हैं? कोई ऐसी जगह जहां पर आपको सुकून मिले, शांति मिले। तो सभी चीज इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर दोस्तों। जो सुविधा हम सोचते हैं हम उसको हैप्पीनेस मान लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो सुविधा है वो आपको शांति दे। तो थिंक अबाउट इट एंड या आई नो we misunderstand the two words and fool ourselves the entire life till we die। enjoy karte hain ye geet dosto।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 04305258 96, दैट इज 04305258 96। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
4: दोस्तों, अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया, आशा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। यू हैव अ लवली डे, ब्यूटीफुल वीकेंड, और मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन, नमस्कार।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

நான் ஆட் அவுட் பாக்குறீங்களா? சே, அடே. ஐயோ, ஜானிக்கு வாய்ஸ் வா.

है रेडियो 79 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूँ हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79.1 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79.1 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे,
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो, और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: जी ने यही सिद्धार्थ की तरफ इशारा किया है। जन्नत बनाई थी, उन्हें बड़ी नेमतों से नवाजा था, हमने उखाड़ दिया उनको। समूद ने बड़े बड़े पत्थर की चट्टानों में को चीर करके तलाश करके अपने मकानात बनाए थे, हम इसमें रह करके हमारी हिफाजत हो जाएगी। लेकिन जब हमने अपना अजाब भेजा तो ये पत्थरों की चट्टानों में बसने वालों को भी हमने दुनिया से निष्ठो नाबूद कर दिया। फिरौन बहुत डराता था, हमारे नबी की हर बात को ठुकरा रहा था। हमने उसको पकड़ा, हमारा एक कोड़ा चला, इन जालिमों और हुकूमत करने वालों को जो अल्लाह के हुकूमत को तोड़ते थे, हमने एक एक को खत्म कर दिया। ये आयतें जो बयान की गई हैं इसमें यही बात क्या है, अल्लाह के अजाब से हमें हिफाजत चाहनी चाहिए, रब करीम के हुक्म के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। वो खालिक है हमारा, वो मालिक है हमारा, वो रहीम करीम भी है। हमें उसके हुक्म पर सर झुका करके उसकी इताअत ताबेदारी करके अपनी जिंदगी को ईमानवादी जिंदगी बनानी चाहिए, नाफरमानी से अपने आप की हिफाजत करना चाहिए। दिन हमारी जिंदगियों में हो, दिन हमारे घरों में हो, पूरे मुल्क के अंदर हो, पूरी दुनिया के अंदर हिदायत आम हो जाए, तो अल्लाह सुबहान व तआला की रहमत की बारिश है चारों तरफ बरसेगी। दुआ है कि अल्लाह सुबहान व तआला इन बातों पर मुझे भी सुनने वाले भाई और बहनों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए और ये जिंदगी ये कदर करने की तौफीक अता फरमाए, मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अपनी पकड़ से हमारी हिफाजत फरमा दे, ईमानवादी जिंदगी नसीब फरमा दे, उसने खातिमा नसीब फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वआखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: अभी आप सुन रहे थे आज जुमा है प्रोग्राम में महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान। इस स्टेशन पर आज जुमा है प्रोग्राम आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर करीबन 9:30 बजे तक।

किसी को दौलत दुनिया वो दी अदा कर दी, मरीज के लिए अल्लाह से दुआ कर दी, माफ़ अहले खता की कभी खता कर दी।

रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। मैं आपको याद दिला दूं कि हर रविवार के सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सुन सकते हैं सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। और हर जुमे के दिन फ्राइडेज को आपके लिए 9 से लेकर 9:30 बजे तक महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ आप सुनते हैं जुमा बयान। और फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में ओल्ड विंटेज कवाली, हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए ओल्ड विंटेज कवाली।

का जाओ इसका फैसला कर देंगे महबूबे खुदा, जाओ इसका फैसला कर देंगे महबूबे।

और फिर प्यारे नबी के पास जाकर ये कहो, या नबी दोनों की तख्ती पर उछालो सेब को, यानी तुम इस फैसले का जज बना लो सेब को।

गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, कैसे हैं? भाई देखिए, मैं तो जबरदस्त हूँ। सुबह जब उठी थी तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेजीनेस लग रही थी और मन नहीं कर रहा था। लेकिन देखिए ना, माइक मुझे मिल गया और मैं एकदम बढ़िया हो गई, जबरदस्त हो गई। यू नो, सुबह सुबह अगर हमारी फेवरेट चीज हमें मिल जाए तो दिन बन जाता है, और मेरा दिन तो बन चुका है। वैसे आप कैसे हैं? आपका दिन कैसे गुजर रहा है, कैसा बना है? देखिए, अगर जिंदगी में कुछ ऊपर नीचे है, कुछ सही नहीं है, तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हम है ना, और हम आपके इस दिन को बहुत ही खास बनाने के लिए इट हैपेंस को लेकर आ गए हैं। रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर आप हैं सताक्षी के साथ। सो चलिए, दिन की शुरुआत की बात है तो यूं ही थोड़ी ना गुजरने देंगे। शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्थानी 1701 एम।